0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

0: Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथहॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Sounding good throughout the night. With the biggest soothers. It's your Leica Radio.

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कहे ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कर कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाय। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाय।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

आवे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भाव।

0: क्या धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। राम लखन फिल्म से था ये गाना मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज है। और उससे पहले जमाने को दिखाना है आर डी बर्मन का म्यूजिक और उन्हीं की आवाज में गीत हमने आपको सुनवाया। और इस तरह से आज के फ्राइडे के मनोरंजन शो की शुरुआत हो गई है। ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और लीजिए आज एक बार और ऋतु शर्मा इस शो में आपका साथ दे रही है। मंडे से रवि शर्मा जी आपको एंटरटेन करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आपने भी कल क्या किया, कैसा दिन बिताया, मजे किए? चलिए उम्मीद है आज भी आप बहुत ही अच्छे हैं, चुस्त तंदुरुस्त खुश हैं, हैप्पी हैं और मेरा साथ देने के लिए तैयार भी। तो बस बढ़ जाते हैं आगे, ऐसे ही एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने मैं आपको सुनवाती रहूंगी। बस आप हमारा साथ देते रहिए और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिल जाएंगे 127 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica
3: Radio. Leica
2: Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट की टीम्स आपस में खेलेंगी और दूसरा मैच होगा अर्जेंटीना और कैबो वेडे के बीच में। और हम आपको याद दिला दें कि आप अपना 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से। और ये सब आपको मिल सकता है जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
4: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
5: This July, witness the rise of a new force.
4: Hi boys.
6: What's up?
5: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shadvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
4: Mujhe sirf tumse baat karni hai. Rok lo.
5: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha in cinemas now.
7: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
8: OMG!
7: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
8: Murder Mystery!
7: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk, exclusive radio partner. Leica Radio. Yeah.

0: माला सिन्हा और मनोज कुमार की फिल्म थी ये। आई थिंक मनोज कुमार ही थे। यस, फिल्म का नाम हिमालय की गोद में और म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का। आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो से और आपके ढेरों ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जो ये बता रहे हैं कि ऋतु हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बस आप हमारे रेडियो सेट्स से जुड़े ही रहिए, उसके पास बैठे ही रहिए, क्योंकि 11:30 का टाइम है जब हरी हरन जी यहाँ लाइका हेडक्वार्टर्स में आएंगे। तो बिल्कुल अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका कल शो है, वो परफॉर्म करने वाले हैं, शो सोल्ड आउट हो चुका है, तो उनसे बातें होंगी और उनके बारे में जानेंगे, शो के बारे में जानेंगे और ये सब जानना चाहते हैं और उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनकी खुद की बातें सुनना चाहते हैं, तो आप लाइका रेडियो नेटवर्क से जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपके मैसेजेस का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आज के प्रमुख समाचार। तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। भारत में मानसून का कहर है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत से लेकर मुंबई तक मानसून की भारी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे में जल भराव के दौरान करंट लगने से एक छात्रा की मौत की भी खबर आई है। उधर जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ के दर्शन के लिए अमरनाथ रवाना हो गया है, यानी कि अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हैं और वहीं उत्तराखंड के भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसकी पुष्टि वहां के पीएम क्रिस्टोफर लैक्सन ने की है। और नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहली औपचारिक मुलाकात की। कुछ और खबरें आपको सुनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में तेहरान उनकी लगभग सभी मुख्य शर्तों पर सहमत हो गया है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के 8 दिन बाद मलबे से एक सुरक्षा गार्ड को जिंदा निकाला गया है और इस आपदा में मरने वालों की संख्या 2295 यानी कि 2295 तक पहुंच गई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। और उधर अल्जीरिया में 2019 के बाद दूसरे संसदीय चुनावों के लिए मतदान समाप्त होने के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। इंडोनेशिया में पापुआ क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक विमान को आग लगा दी, जिसमें एक अमेरिकी पायलट की मौत हो गई। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा की सीमा पर स्थित दानासर क्षेत्र में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सहायक शाहिद रिंद ने दुर्घटना में 40 लोगों की मौत की पुष्टि कही है और कहा है कि 8 यात्री भी घायल हुए हैं। उनका कहना है कि शुरुआती जानकारी से पता चला था कि हादसे की शिकार बस में अपने यात्रियों के अलावा अन्य बस यात्री भी सवार थे, जो खराब हो गई थी और बस एक गहरी खाई में गिर गई, जिससे यात्रियों तक पहुंचना और उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्ला अली खमनई का अंतिम संस्कार समारोह शुरू हो गया है। इसी बीच वहां विदेशी मेहमानों और गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब तक तक तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय नेता, इराकी संसद के अध्यक्ष, देश के राष्ट्रपति, इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रमुख, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री उन लोगों में शामिल हैं जो आयतुल्ला अली खमनाई को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित रहेंगे। और इस समारोह में दर्जनों अन्य देशों के नेताओं, सांसद, अध्यक्षों और विदेश मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। आपको बताएं कि आयतुल्ला अली खमनाई की ईरान पर इसराइल के हमले में मौत हो गई थी और उनके साथ ही ईरान के कई आला अधिकारियों की भी मौत हो गई थी। सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, लोग जा रहे हैं, ये हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड से खबर सुनवा देते हैं आपको कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी शादी के प्रोग्राम का ब्यौरा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 5 जुलाई को मेरी शादी हो रही है और हमारे लिए ये बहुत ही खास दिन है। शादी समारोह में दोनों तरफ के परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे और शादी घर पर ही होगी और मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारे लिए दुआ करें, आशीर्वाद दें, हम खुश रहें और हमारा सफ़र अच्छा चले। तो अगर आमिर खान आपके फेवरेट एक्टर हैं तो आपको बता दें कि 5 जुलाई को वो गौरी स्प्रेड से शादी कर रहे हैं। और क्रिकेट से जुड़ी खबरें सुनाते हैं। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गया है, यानी कि इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। कल ओवल में खेले गए सेमीफाइनल में मिली इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर एक और विश्व कप खिताब जीतने से बस अब एक कदम और दूरी पर है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो फीफा वर्ल्ड कप में पोर्चुगल भी पहुंच चुका है अंतिम 16 में, जहां स्पेन से उसका मुकाबला होगा। एक बेहद ही रोमांचक मैच में पोर्चुगल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर आखिरी 16 में अपनी जगह बना ली है। और यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: खूबसूरत गाने हैं ये, इन्हें आप कितनी भी बार सुन लीजिए जी नहीं भरता। ये गाने ऐसे हैं और मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में भी ऐसा होगा कि इन गानों को सुनकर जी भर जाए। ये गाने कभी पुराने नहीं होंगे। देखती हूँ मैं आजकल के छोटे छोटे से बच्चे जब कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो ऐसे गाने गाते हैं, तो बताइए आज की जनरेशन को भी ये गाने पसंद है, पुरानी जनरेशन को भी ये गाने पसंद है और आने वाली पीढ़ियाँ भी इन गीतों को जरूर पसंद करेंगी, क्योंकि म्यूजिक ही ऐसा है, ट्यून ही ऐसी है, गीतों के बोल ही ऐसे हैं और मुझे लगता है ये गाने तो अब सब अमर ही हो चुके हैं। और हमारी अनीता जी का कहना है, रितेश का कहना है, क्या खूबसूरत गाना है। चलिए आप दोनों को डेडिकेट करते हैं और आपके अलावा मुझे और भी ढेरों मैसेजेस मिले हैं तो एक नजर उन पर भी डाल ली जाए, क्या कहते हैं आप?
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: तो भाई आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे राजेश जी जुड़ गए हैं, कहते हैं क्या आप अपने शो में हरिहरन जी से बात करेंगी? तो देखिए उनका टाइम तो है 11:30 बजे आने का, लेकिन लंदन में ट्रैफिक भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर वो आ गए तो ज़रूर बात की जाएगी, और अगर वो लेट हो गए नहीं आ पाए तो फिर जो आने वाले प्रेजेंटर हैं वो उनसे बात करेंगे, लेकिन आपसे उनकी बात मतलब आपको उनकी आवाज़ उनकी बातें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। और बस 11:30 बजे के बाद कभी भी वो आ सकते हैं, ये मैं कह नहीं सकती कि वो कब आएंगे। तो थैंक यू हमारा साथ दे रहे हैं आप, यस अच्छी बातचीत होगी, मजा आएगा आपको, जरूर रेडियो सेट्स के पास ही रहिए। और ज्योति कहती हैं कि रितु आ जाओ, मैं मसाला जिंजर चाय बना रही हूँ विद गरम गरम पराठा। क्या बात है, देखो आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया। कौन सा पराठा बना रही है? आलू का पराठा। आलू पराठा इज माय फेवरेट पराठा। यू नो जैसे सब्जियों का राजा आलू होता है, मुझे लगता है पराठों का राजा है आलू का पराठा, क्योंकि पराठे तो बहुत सारे बनते हैं, आलू का, मूली का, गोभी का, पनीर का, मिक्स वेज का, लेकिन जो बात आलू के पराठे में है ना वो किसी और में नहीं। तो आलू का पराठा पराठों का राजा, मुंह में आपने मेरे पानी ला दिया, मजे के साथ खाइए मेरी ओर से भी। और इसके अलावा विनोद जी बिल्कुल आप हमारा साथ दे रहे हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, आप भी गए हैं क्या कभी? मेरी इच्छा है वहां जाने की, लेकिन कहते हैं बहुत कठिन चढ़ाई है, पता नहीं मैं वहां जा पाऊंगी या नहीं। एनीवेज दिल में ख्वाहिश तो है, और कहते हैं ना दिल में ख्वाहिश हमेशा रखनी चाहिए, फिर ऊपर वाला उसे पूरी करने की भी हिम्मत आपको देता है, देखते हैं होता है या नहीं। उल्लास टोरंटो में हमारे साथ है, गिरीश जी भारत में जुड़ चुके हैं, प्रज्ञा हमारे साथ है, वंदना जी हमारे साथ है, कहती है मुझे आपका इंतजार था, ओ सो स्वीट, थैंक यू। हमारे साथ हंसा जी हैं, तोशी जी हैं, वजाहत है, हेतल सलंकी हैं, फरीदा गुलाम अली जी, भरत गंगाराम जी, मिस्टर शेख, मृदु जी, राजीव पटेल, अर्जुन जी, अनिल सोनी, प्रकाश सुथार, राजकुमार सहर, कीर्ति, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो जितने भी साथी साथ दे रहे हैं ना, तो बस साथ देते रहिए, हम आपको यूं ही गाने सुनवाते रहेंगे।
1: Like a radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिए, साउथॉल ट्रैवल। दुबई के लिए बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं, तो आप उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: We have
1: Leica Radio.
2: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry, 16th to the 19th of July. Click riffcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
6: Radio partner, Leica Radio.
7: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
8: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty, and total desi swad in char mazedar flavors.
7: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now. Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit heartyhanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit heartyhanks.com today.
10: Punjab, the biggest tunes.

0: लीजिए एक और खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज में, निर्मला जी, जासू जी, दिव्या जी, आप सभी को डेडिकेट करते हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि आलू का पराठा तो हमारा भी फेवरेट है और ज्योति जी भी आलू के पराठे बना रही हैं। तो भाई आलू सब्जियों का राजा है तो क्यों नहीं होगा फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं तो सब्जियों की रानी कौन है? भाई राजा है तो रानी भी होगी ना, तो आपको क्या लगता है कि सब्जियों की रानी कौन है? देखते हैं आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से सब्जियों की रानी कौन है। और मैं भी सबसे सोच रही हूँ कि यार सब्जियों की रानी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपकी नज़र में कौन सी वो सब्जी है जो बन सकती है सब्जियों की रानी? आप भी सोच रहे होंगे तो क्या बातें कर रही है।
1: Like a radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Like a radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 100.6 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Leicester, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry.
4: Samara Black Tea 1 kg 3.99. Elephant Medium Atta 25 kg 14.99. Falcon Brown Sugar 3 kg 3.99. Leela Basmati Rice 10 kg 11.99. Suhana Khamand Dhokla 500 gram 1.99. Falcon Red Lentils 1.5 kg 24.399. Parle Ji Multipack Biscuit 799 gram 199. Falcon Lemon Juice 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry
5: 82 Assistant Street LE12JU ya Rowlett Hill LE54UN.
4: Big deals, big savings while stocks last.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J. Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J. Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J. Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
10: Nuneaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. New hits on Leica Radio.

0: Station commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Good morning. आइए बात कर लेते हैं आज के मौसम की. और आज लंदन में मौसम मिला जुला रहने वाला है. कभी बादल दिख जाएंगे, कभी सूरज आ जाएगा और आज अच्छी खासी धूप भी आने वाली है. आज लंदन में मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्रीज को टच करेगा और मिडलैंड्स में आज ये टेम्परेचर जाएगा 25 डिग्रीज तक.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

मॉर्निंग। 11:03 हो चुके हैं। आज फ्राइडे का दिन है, 3 जुलाई है और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज का चिंतन जिसमें भी मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाई हूँ, लेकिन उससे पहले किसी ने देखिए बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो समझ लेना कि सफर बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। भोर के अंधेरे से निकलकर ही सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमकता है और दुनिया पर राज करता है। और अपने हौसले को उसी सूरज की तरह बुलंद रखना हमारा काम है। मुश्किलें इस बात का सबूत होती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आसान रास्तों पर अक्सर मंजिलें नहीं मिलती। सुनाती हूं आज एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से बीज को जमीन के अंदर गहरे अंधेरे में दबा दिया गया। जमीन के अंदर चारों तरफ सिर्फ घुटन, मिट्टी का भारी दबाव और घोर अंधेरा ही अंधेरा था। और इन सब के बीज वो नन्हा सा बीज बहुत घबरा गया। उसने सोचा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। लेकिन तभी जमीन के ऊपर से उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, घबराओ मत, ये मुश्किल घड़ी तुम्हें मिटाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी असलियत से तुम्हें मिलाने के लिए आई है। बीज ने उस बात को सुनकर हिम्मत जुटाई। उसने उस भारी मिट्टी के दबाव से लड़ना शुरू किया। हर दिन वो मुश्किलों से जूझता रहा, अंधेरे को चीरने की कोशिश करता रहा और कुछ ही दिनों में संघर्ष के बाद उसने मिट्टी को फाड़कर बाहर अपना सिर निकाला। जैसे ही वो बाहर आया, उस पर सुबह के सूरज की पहली किरण पड़ी। वो छोटा सा बीज अब एक सुंदर मजबूत पौधा बन चुका था और कुछ सालों में वही पौधा एक विशाल पेड़ जो अपनी पूरी चमक और अपनी मजबूती के साथ खड़ा था। आंधी तूफान कोई भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं सकता था। अब सोचिए कि अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा और मुश्किलें हैं तो ये आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि एक नए रूप में बिखरने और सूरज की तरह चमकने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। अपना हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी पाना है उसके लिए मेहनत, ताकत सब कुछ झोंकना पड़ता है। दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। अपने अंदर विश्वास रखना है, मेहनत से नहीं डरना है और हमेशा उस ऊपर वाले का ख्याल करना है। बस चलते जाइए, जीवन इसी का नाम है। अगर ये सारी चीज साथ रही ना तो आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता।

0: अनूप जलोटा की आवाज में जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। आज के चिंतन में जो बात बताई वो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में अपना हौसला बनाए रखिए। देखिए किसी ने कितनी खूबसूरत ये लाइंस लिखी है कि जैसे सूरज की गर्मी से तपकर ही कुंदन अपनी चमक पाता है, वैसे ही मुश्किलों की आंच में जलकर इंसान मजबूत बन जाता है। न डर इस धूप से, न घबरा इस तपिश से, ये तेरी रूह को निखारेगी। यही आग जो आज जला रही है तुझे, कल तुझे नया रूप दे जाएगी। जैसे रात की गहरी खामोशी के बाद ही भोर का उजाला सबसे खूबसूरत लगता है, वैसे ही आज का ये संघर्ष कल तेरी सबसे बड़ी कामयाबी की कहानी लिखेगा। इसलिए सूरज को देखिए, सूरज की तरह तपना सीखिए, ताकि आप पूरी दुनिया को रोशन कर सकें। और यही था आज का चिंतन, यही था आज का विचार, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। ये है दीपक, कहते हैं बहुत खूबसूरत बात थी और चिंतन का जो गाना था वो और भी खूबसूरत था, आपको पसंद है, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। किरण जी कहती हैं चिंतन हमेशा ही इंस्पायरिंग होता है, कुछ अच्छा सोचने समझने पर हमें मजबूर करता है। थैंक यू राजीव पटेल जी, आपको भी चिंतन की कहानी और उससे जुड़ा गीत पसंद आया। थैंक यू निर्मला जी, रागिनी जी, अर्जुन जी, जगदीश जी बुशी से, जय किशन वाला, जैस्मीन जी, रोहित एंड जासू जी, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ऐसे करते हैं, चिंतन को समेट देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आगे बढ़कर बता दें आपको कि आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और हाँ, हम बातें भी कर रहे थे कि भाई आलू का पराठा पराठों का राजा होता है और आलू सब्जियों का राजा होता है, तो मैंने आपसे पूछा था कि सब्जियों की रानी कौन सी है, तो आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी, जिनके बारे में बातें करूंगी। लेकिन पहले आपको एक चीज और बता दें और उसके बाद दो बैक टू बैक गाने सुनवा दें, फिर हम बातें करेंगे कि सब्जियों की रानी आखिर कौन है।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज ही ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच में मैच होगा और दूसरा मैच होगा अर्जेंटीना और कोबो विडे के बीच में। और आपको याद दिला दे कि अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना आप बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: ये है
4: Leica Radio.
5: लिस्ट, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
5: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
7: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
8: The
3: theatrical blockbuster, Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding, is back for a third season. This time there's a wedding, a secret, and a murder.
4: OMG!
3: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
4: Murder Mystery!
3: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre, and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
9: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
10: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
14: 4 beers, please, garçon!
13: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
15: Leica Radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: लता मंगेशकर और हरी हरन जी की आवाजों में था ये गाना, डर फिल्म से लिया था। और आप सब जानते हैं कि आज हरी हरन जी हमारे लाइका रेडियो हेडक्वार्टर्स में आने वाले हैं, और इस समय अगर वो गाड़ी में हैं सुन रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो आपको सुनने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ लाइका रेडियो से बड़े ही इंतज़ार में हैं। तो बस हम सभी को इंतज़ार है कि आप जल्दी से यहाँ आएँ। और आपको बता दें कि हरी हरन एक हमारे बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर, अच्छे, बहुत बढ़िया सिंगर हैं जिन्होंने 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं और पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। और इसके अलावा एक से बढ़कर एक गाने इन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स में गाए हैं, और जब आप उनके शो में देखने जाएंगे, शो में उन्हें सुनने जाएंगे, तो आपको वही सब गीत लाइव सुनने को मिलेंगे। क्या कमाल की बात है।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। थैंक यू गिरीश जी, भारत में हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं चिंतन मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू साथ देने के लिए। और ये है हमारे हरीश खत्री जी, ट्राई टू, क्या आपने लिखा है, आप मुझसे भी कोई रिडल पूछ रहे हैं क्या? निर्मला थैंक यू, जन्म जन्म का साथ आपको पसंद है। और रानी, हाँ सब्जियों की रानी की बात करते हैं, रानी से मुझे याद आ गया, रानी जी सलाव में सुन रही हैं, आप ऐसे बहुत सारे साथियों ने भिंडी बोला है, रानी कहती है कि भिंडी सब्जी की रानी है, रितेश कहते हैं कि बैंगन है, हिमा जी आपको चिंतन पसंद आया, थैंक यू, कीर्ति जी बहुत धन्यवाद आपका, जासू जी आपको भी चिंतन बहुत पसंद आया, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू। और हमारे साथ शोभना राय हैं जो कहती हैं कि जो गीत आपने सुनाया जैसे सूरज की गर्मी से, मुझे बहुत पसंद आता है ये गीत, तो ठीक है, थैंक यू, आपके नाम हम करते हैं। इसके अलावा हमारी अरुणा जी का कहना है कि मुझे तो लगता है कि प्याज है सब्जियों की रानी। दीपक वोरा, आपने भी भिंडी का नाम लिया है, और दिनेश जी ने नाम लिया है उसका जो मेरे मन में है कि उसके अलावा तो कोई और रानी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं देखती हूँ कि पहले किस किस ने और उसका नाम लिया है। हमारे भारत जी भी कहते हैं भिंडी सब्जी की रानी है, विशाल भी भिंडी कह रहे हैं, तो भाई बहुत सारे लोग भिंडी कह रहे हैं, सिर्फ दिनेश जी ने उसका नाम लिया है जो मुझे लगता है वाकई में सब्जियों की रानी है, क्योंकि अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो भी वो आपकी सब्जियों में पड़ती है, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो भी सब्जियों में पड़ती है, वेज खाते हैं तो भी सब्जियों में पड़ती है, फास्ट में भी उसे डाला जाता है, बिना फास्ट के भी डाला जाता है। यस, और उसके भी सिर पर होता है ताज, तो बताइए कौन है वो जो हो सकता है सब्जियों की रानी अकॉर्डिंग टू मी। वैसे भिंडी के सर पे भी ताज होता है, बैंगन के सर पे भी ताज होता है, लेकिन उसके सर पे भी तो ताज होता है, और वो हर चीज में डाली जाती है, उसके बिना सब्जी का स्वाद नहीं आता है। सोचिए सोचिए बताइए मैं किसकी बात कर रही हूँ।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है, और इस बार का टॉपिक है राइज इन वुमेन्स क्रिकेट, और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं सभी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स पर, जो है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio. Laika
3: Radio. Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifco Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifcoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner Leica Radio.
8: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total riz, hai na?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: ये है लाइका गो।

0: ये थी नाजिया हसन की आवाज, कुर्बानी फिल्म से लिया था ये गाना। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो। एंड पंडित सुधीर शर्मा जी पूछते हैं कि चिंदन का कंटेंट मैं कहाँ भेज सकता हूँ, तो आप बिल्कुल यही हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा ऐसा मटेरियल है जिस जो चिंदन में यूज किया जा सकता है और जिसमें अच्छी बातें हैं, तो वाई नॉट आप में से कोई भी भेज सकते हैं, हम आपके नाम के साथ उसे जरूर सुनवाएंगे। थैंक यू भारती जी। अमर जी कहते हैं कि टमेटो भी तो होता है, उसके सिर पर भी क्राउन होता है। बिल्कुल, लेकिन टमेटो बहुत सारी सब्जियों में नहीं यूज होता है। मुझे लगता है मिर्ची है सब्जियों की रानी, उसके सिर पर भी ताज होता है और उसके बिना किसी भी सब्जी में स्वाद नहीं आता, चाहे वो फास्ट वाला खाना हो, चाहे नॉन फास्ट वाला खाना हो, चाहे कुछ भी हो। चिलीज जो होती हैं हर चीज में डलती हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं ये खिताब मिर्ची को देना चाहूंगी, सब्जियों की रानी का। आपके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं और मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। राजू पटेल जी, आपने भी कहा है कि चिली, यस चिली यानी कि मिर्ची बन गई है आज सब्जियों की रानी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: जाहिदा और देवानंद की फिल्म गैम्बलर से लिया था हमने ये गाना, जिसमें म्यूजिक था एस डी बर्मन का। और अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: लीजिए शमशाद बेगम और लता मंगेशकर इस गाने को गा रही थी। दीदार फिल्म से लिया था ये गाना, 1951 की फिल्म जिसमें नौशाद और शकील बदायूनी ने लिखा था, नौशाद का म्यूजिक था और ये नरगिस, अशोक कुमार, दिलीप कुमार और निम्मी की फिल्म थी। इस बार की हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम है, तो कुछ ऐसे ही गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। जासू जी, अर्जुन जी का कहना है बहुत ही खूबसूरत गीत था, और फरीदा जी का कहना है कि ये सॉन्ग उनकी सिस्टर शामी का फेवरेट गीत है, शी इज लिसनिंग सिंगिंग एंड डांसिंग। वाओ, तो चलिए शामी ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं और उनके साथ साथ उन सभी साथियों को जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। और थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए शमशाद बेगम के गाने ढूंढ कर लाना कि कौन सा अच्छा है और कौन सा आपको पसंद आएगा, लेकिन मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो उसके लिए थैंक यू। और बस अब बढ़ जाते हैं आगे और आपको याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क जी के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं माइथोलॉजिकल शो हमारे राम, और ये शो होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन्स एवेंटिम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं और राहुल आर भुच्चर बने हैं राम। तो अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी से टिकट्स बुक कराइए, क्योंकि कई शोज हो रहे हैं और उनकी टाइमिंग्स भी अलग अलग है, आपको पता होगा, तो ज़रूर अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से टिकट्स बुक कराइए।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये गाना मैं अपनी ओर से आप सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप लोग साथ होते हैं तो सच में समय का पता ही नहीं चलता, और इन दो हफ्तों में मुझे आप सभी के साथ बहुत मजा आया।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: क्योंकि जब भी शो में आती हूँ हमेशा ही कुछ नए लिसनर्स मिलते हैं, कुछ नए लोगों से जुड़ते हैं, कुछ नई बातें पता चलती हैं, तो मज़ा आता है। और आप सबका भी इतना प्यार मिला कि खूब अच्छा लग रहा है। आज इस शो में मेरा आपके साथ लास्ट डे है, मतलब मंडे से रवि शर्मा जी इस शो में आ जाएंगे, लेकिन सैटरडे संडे तो हमारी आपकी मुलाकात होती ही रहेगी। और थैंक यू सो मच इतने सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए, और आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी साथ दे रहे हैं, थैंक यू संतोष जी हमारा साथ दे रहे हैं, एंड राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने आज जो चिंतन भेजा है, मंडे या तो रवि शर्मा जी सुनाएंगे या फिर जब अगली बारिश शो में आऊंगी तब चिंतन में इसको जरूर यूज करूंगी, संभाल के रखूंगी। सो थैंक यू। बस कुछ देर का बचा है और हमारा और आपका साथ, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ थोड़ी ही देर में।
1: Leica Radio. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: सुरेश वाडकर की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के म्यूजिक पर यह गाना मिथुन चक्रवर्ती और जीना तमान की फिल्म यादों की कसम से लिया था। और बस अब हमारा और आपका साथ ज्यादा नहीं बचा है। गिरीश जी कहते हैं कि आपके साथ दो हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और आपने ये भी लिखा है कि अच्छा समय कितनी जल्दी बीत जाता है। बात तो सही है, अच्छा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे सभी के जीवन में बस ये अच्छा समय हमेशा के लिए यूं ही रुक जाए, हमेशा ही सबके जीवन में अच्छा समय ही रहे। सो थैंक यू ढेरों मैसेजेस भिजवाने के लिए। और बस अब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं।
1: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: So hello Kamal ji, bataiye aaj hamare liye kya laaye hain aap?
3: Haan Ritu ji, how are you? Good afternoon. Kaise ho? Theek hai?
0: Bilkul achhi, aap bataye.
3: Brilliant, बहुत अच्छा। कल तो I've never seen a game like that. Yesterday semi-final था, 21,000 people were there. This is the record for a semi-final match between England and South Africa, but any match. तो इतना अच्छा मैच था, very close match भी था पहले, but England played so well yesterday. They fielded well, bowled well, and they even they skillfully. Although they started very badly, so मुझे पहले तो लगा कि they're going to lose because they lost 4 wickets very quickly and 169 for 5 in 20 overs. In the end, they made a recovery. Captain ने 75 runs मारे, और vice जो उनका previous captain है Heather Knight, he got a 50 plus. So good partnership and अच्छा score कर गए फिर. South Africa, I mean they batted very well in the beginning. I thought they are really going to accelerate. But then vital time mein unki wickets chali gaye, and that's where experience, good bowling, catching counts. So South Africa actually didn't do too well. They started losing wickets quite often, 129 for 8 in 20 overs. So great win for England and good luck to them in the final, which will give you all the updates from Lord on Sunday. So it's going to be bahut acha final hone wala Australia aur England ka. आपको क्या लग रहा है रितु जी, कौन जीतेगा?
0: Obviously, मैं चाहूंगी कि इंग्लैंड जीते।
3: अच्छा, तो आप बोल रहे इंग्लैंड, तो मुझे भी यही लग रहा है कि इंग्लैंड जीतेगी, बिकॉज द क्राउड इज सो मच बिहाइंड देम एंड दे हैव गॉट वेरी गुड टीम एज वेल, सो बोथ आर अनबीटन एट द मोमेंट, सो एवरीथिंग टू प्ले फॉर दैट ब्रिलियंट ट्रॉफी।
0: जी जी, थैंक यू कमल जी,
3: थैंक यू। ओके रितु जी, ओके, बाय बाय,
0: बाय बाय।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: तो आपको बता दें कि अगर हॉलीडे जाने की प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल के पास बड़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव डील्स है दुबई के लिए। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, एट ऑल प्रोटेक्टेड है, और दुबई घूम कर आइए।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास.
4: Like radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
3: The gold rate is 100.6 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: तो लीजिए बस आज का मेरा और आपका साथ बस यहीं तक. अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार आपका साथ देंगे बाली ब्रह्मबर और किसी भी समय हरिहरन यहाँ आ सकते हैं. अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो जरूर उनसे हुई बातचीत भी आप सुनिए जो लाइव होगी. तो मेरा और आपका साथ यहीं तक. कल मैं आपसे फिर से मिलूंगी अपने शो में. 10 से 1 साथ देना जरूर मत भूलिएगा. और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस शो में मेरा साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, गीतों को पसंद किया और अच्छी अच्छी बातें कही. सो थैंक यू. अपना ख्याल रखिए. कल सुबह तक के लिए आप सभी को बाय बाय. Take care.
5: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
4: ये है
6: Leica Radio.
7: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
8: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
7: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी.
8: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
7: Big deals, big savings, while stocks last.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
13: साउथ हॉल ट्रेवल.
14: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203 129 9840.
15: Hip
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: LenFi means quicker and safe way to send money.
15: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
13: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
15: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
16: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
17: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
19: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
20: खुद से भी ज्यादा।
18: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
21: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
18: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
22: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Next, Gold Afternoons with Bali Brambat on Leica Radio Midlands.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Wow, what a song. And Nachte Nachte Kaun Aaya Yahan. It's Sandy Shah for Drive Time. And it's going to be Raj Patan on Leica Radio Midlands.
1: It's summer on the Leica Radio Network.
2: ओए चन जी जरा मुड़ के तो देख लो जाते जाते
0: जाते जाते ये भी बोल दूं कि इट्स एनिका दैट्स राइट आई वाज ओनली फूलिंग यू ही इज अ वीकेंड ऑफ नाउ सो एनिका को एनिका का साथ दीजिएगा एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड आई एम गोइंग टू बी विद हरिहरन शो विश मी लक ऑल द बेस्ट
3: जरा मुड़ के तो देख कुड़िए जाते जाते ओ जरा जाते

0: Odisha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: Like a radio network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Lester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
6: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
7: Hosted by the team of Lyca Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
6: Lester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
6: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
7: Hosted by the team of Lyca Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
6: Lester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
6: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
7: Hosted by the team of Lyca Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
6: Lester Miller is back.
7: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
6: H. Dami. Bringing the hits, the energy, and those proper live stage vibes.
7: Hosted by the team of Lyca Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
8: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
9: Number 5.

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, likeareadio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी
1: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
4: Going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
5: Okay, help's on its way.
6: Grab my hand!
7: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
9: Listen back to your favorite shows by logging on to likeareadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
10: Hello, this is Annika. Join me on a weekend drive every Friday, Saturday and Sunday as I drive you home for the weekend. And every Friday from 6 to 7, I'll be counting down the biggest tracks on the brand new chart show. Let's get your weekend started.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
3: नाम परशुराम. अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो.
3: परिवार उसके लिए चारों धाम. बाहर वो है परशुराम.
4: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
5: This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network.
6: Laika Radio.
5: Time for another Laika Love Classic.

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
1: Safo Travel, at all protected. Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Yeh hai Like a Gold.